0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: Extreme energy drink.
1: कक्षा 11 को भर्ना सम्बन्धी सूचना
2: माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2082

सुजन बीके अफिसियल यूट्यूब चैनल में सर्वत्र उपलब्ध छ। हेर्न र सुन्न नभुल्नुहोला। लोक सांगीतिक कोशेली मठ मंदिर धाएर कसम खाएर।

0: चौ मा प्लानचोक बेकरी सामुदायिक अस्पताल को अगाड़ी चरीकोट दोलखा
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
2: मेरो निर्माण राउत हो
3: मेरो त देवकिशोर राकोटी हो
4: आकाश मैलो कालो बादलले

0: आजुरा को बेची सावनी आई रही चुमा पानी ओरी ओ राजा रानी रानी आई उन संसार की नहीं रही ले यो जीवन ऐसा ईशु क्या कथा ना यो घर को फिर रही ले ओरी ओ उकाली जान को सावले दे ढूंगो गलां दा गल दाई ना गरा को मांचे ना बिजे सामन दानाई फल दाई ना
1: यो कालो बन्नी वेला गाऊं ने
2: शुरू करनी वेला ची की गाई शादा शुरू
1: में से बयान को झूल के गाम शीता को तोपनी बात इमरे बेटी चावनी आई रिचु मापनी
2: मेरो लेडी
0: हरिया बन्नो कांचोई पाता पाके को खुर्शानी बागमती दाई यो थमाई समझाऊनी बिरसानी ओरी ओ शिरा माहेरा सुना को शैली छाती माहेरा उठाक ज्ञापा माहेर तो हवल दरवाजे समल को साई ना पां ओरी ओ
1: पहला तो सोपा दंगाऊं थे आज अपने गाऊं थे अब किन वाने उल मुल मालबीज किंजे

केवळ नुहुंचा समजे यो मन रुणचा बनव रे तरी कटे आता कचुरा भय झुरा मुरा जावला रे आसन लावला रे बाई नरी सवधान मैले मनी काला जावला रे आसन लावला रे बाई काठाको भरेंग इंचुला रे तरेंग माउमा रे कबा छोरे जाई दंपरो हजार चारी कोटी को बदर माउ महारे को बाचोरे जाई चारी ना कोट को तिमला रातो माटो था माईरे खड़ को डोबाटो दंटे को होरा सोदा वोरा पोरा था माईरे खड़ को डोबाटो आइले को बसा मारे को भाये को ताइरे इन्चो यो बाटो करकाला को पानी डाल के पोखी जानी को ताइरे इन्चो यो बाटो हताइरा मेरो यो पत्र काई गाला हर मीना बाजा दम के गर्नु लरी बिर्साउ कस गरी हर मिना बाजा दम देर पटुकी फुको जीवन मेरो सुका माया रे दालाई सम्झेर भन न भन बाला मेरो

परेरा सालाई नीरस माग्या मालाई, नीरस लाग्यो मालाई, झुलक्यो माया

नगर कलकत्ता, जगन्नाथपुरी उड़ीसा, तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश, लक्ष्मी नारायण गोल्डन टेम्पल बेलरू, कन्याकुमारी तमिलनाडु, रामेश्वरम द्वारिका गुजरात, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग साथ ही सबै धाम क्षेत्र में रहकर प्रसिद्ध मंदिर दर्शन कराइने। यो यात्रा केही स्थानमा बस ट्याक्सी बाहेक बाँकी सम्पूर्ण यात्रा भारतीय रेलको विशिष्ट श्रेणी द्वारा गराइनेछ। अन्य सेवा सुविधा लागत समय सम्पूर्ण जानकारीको लागि विष्णु अधिकारीलाई सम्झनु होला। सम्पर्क नम्बर 9841870793, 9841870793, सादो बाटो चरीकोट दोलाखा।

नमस्कार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 MHz म बद्री प्रसाद साहबबाट आज विक्रम सम्बत 2083 साल आषाढ कृष्ण पक्ष सन् 2026 जुलाई 41 आषाढ 17 गते बुधबार परेवा 3:29 पलब मात्र अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरिया हो सक्षण कल्पे भरी।

पुरस्कार सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नहीं परे का घरे मन राखुन सबले दुर्योधन समान।